0: का चेक बुक तथा संपूर्ण रेमिटेंस सेवा। केंद्रीय कार्यालय श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दिल्ली बाजार गुरुजी को चौक काठमांडू।
1: टुगेदर वी डिलीवर।
2: तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ एफएम अध्यात्म ज्योति।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

कल हमने देखा कि जब मैं अपने आप को कुछ मानता हूँ तब तक मुझे कोई मुक्ति नहीं है। ब्राह्मण मानता हूँ तो भी मुक्ति नहीं है, दलित मानता हूँ, शूद्र मानता हूँ, वैश्य मानता हूँ तो भी मुक्ति नहीं। इसी तरह से मैं अपने आप को गृहस्थ मानता हूँ या सन्यासी मानता हूँ तो भी मुक्ति नहीं। आज इस देश में ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। क्या, या हम शोषित हैं या हम शोषक हैं। ऊंचे जाति के हैं हम तो हम शोषण करने वाले हैं, नीचे जाति के हम शोषित हैं। ये दोनों पकड़ हमको दुखी करता, इससे हम सुखी नहीं रह सकते। अपने आप को शोषित मानते चलो, भूलो मत उसको, तुम कभी नहीं सुखी रहो। या अपने आप को जो वर्ग जो शब्द का शोषण करता है ऐसा मान के चलो तो अंदर ही अंदर आत्मग्लानी खुंदक खा जाएगा तेरा। भयभीत रहोगे तो दूसरों के साथ हाथ नहीं बटा पाओ, स्नेह का, मैत्री का भाव, एक आत्मीयता का। न विप्राधिको वर्णा नाश्रमी नाक्ष गोचर गोचरा, अष्टावक्र कहते तुम मुक्त हो, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है, आश्रम नहीं है, धर्म नहीं है, तुम आकाश जैसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। हाँ, जब काम करते तो कोई ना कोई काम, आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, कोई स्कूल टीचर हो, फैक्ट्री में काम करने वाला हो, कार्मिक हो, कोई भी तुम्हारा काम हो सकता है, मगर वही तुम नहीं हो। हो सकता है तुम एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, मगर तुम अपने आप को उतने ही नहीं सीमित रख दिया, बांध के रह गए अपने तादात्म को, तो तुम सुखी नहीं रह पाओगे। ये सब जैसे कोट पहन के जाते हैं ना, ऐसे जूता पहन के जाते, कोट पहन के जाते, घर आके वो सब उतारते हैं। इस तरह से तुम ये जो पात्र तुम जीवन में ले रहे हो, उस पात्र से तुम बहुत अलग हो, बहुत बड़े हो। कोई राजा हमेशा अपने आप को राजा समझता रहे घर पे तो वो मुसीबत आ जाए। इसी तरह से कोई आर्मी ऑफिसर घर में भी आगे बच्चों के साथ आर्मी ऑफिसर के जैसे व्यवहार करे तो मुसीबत। हमें सुखी होना हो तो हम जो ये सीमित पात्र निर्वहन करते हैं इससे अलग अपने आप को देखना चाहिए, तब हम दुख से पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। दुख से पार होने के ही मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं फलाना हूं, इस पात्र निर्वहन कर रहा हूं, पर इससे भी अधिक मैं कुछ हूं, ये आत्मज्ञान के लिए सहयोगी है। मैं शोषित हूं ऐसे समझने वाले दुखी और बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते, दुख से दूर हो ही नहीं सकते। मैं कमजोर हूं समझने वालों के लिए भी ध्यान नहीं है, मुक्ति नहीं। किसने कहा तुम कमजोर? ऐसा देखा जाए तो बड़े से बड़े राष्ट्रपति भी कमजोर है कहीं ना कहीं क्षेत्र, किसी ना किसी क्षेत्र में। अमेरिका के राष्ट्रपति भी कमजोर है कई बातों में, वो सब अपने मन की सारी बातें वो नहीं चला पाता।
बड़े दुखी रहते हो फिर? और इस ठेले में सब्जी बेचने वाला आदमी भी सुखी रह सकता है, वो भी कितने सुख, जितने सुख से मस्ती से सोता है वो। मुंबई में धारावी में चले जाओ, देखो कितने लोगों के चेहरे में कितनी प्रसन्नता है, क्या खुशी है। ऐसी खुशी आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगी देखने। मैं कुछ हूं समझ के अपने आप को उलझाते रहते हम, और उसी में मजा आने लगता। ये दुरदृष्ट, मैं शोषित हूं, मैं शोषित हूं, हम कहते विक्टिम कॉन्शियस हूं, अपराधी की मनोभाव, मैं अपराधी हूं, अपराधी हूं, उसी में मजा आने लगता। सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं ये कहने में और मजा आता है, ये विकृत हो जाता है, इससे रुग्ण चित्त कहते हैं हम। इस तरह से रुग्ण चित्त से बाहर आने के लिए तो कहते हैं ऐसा वक्त तुम ये नहीं हो, ये जानो। और धर्म अधर्म दोनों मन का है, इससे भी तुम परे हो। कई बार हम कहते हैं हमारे जैसे कोई धार्मिक आदमी नहीं है, तो अपने आप को इतना धार्मिक मानते हैं, दूसरे लोगों को निकम्मा मानने लगते हैं। जो औरों को निकम्मा करके देखोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा कैसे? दृष्टि बदलनी पड़ेगी। क्यों? आत्मा एक देशीय नहीं है, सीमित नहीं है, वो सब जगह फैला हुआ आकाश जैसे। तो मैं न करता हूं न भोगता हूं, या मैं करता हूं तो भोगता भी मैं हूं।

मैंने गलत चीजें खाई तो मुझे पेट दुखता है, वो दुख को भी मुझे सहना पड़ेगा। पेट दुख रहा है भाई, दर्द है, पीड़ा है। हम ये कहें अरे हमने तो पेट कुछ नहीं खाया गलत, मगर पेट दुख रहा है, ये असंभव है। तो हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ करी, हमने किया कुछ, हम भोगते भी हैं। मरीज सुख दुख दोनों के साक्षी होंगे, मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं। हमारी चेतना में एक पार्थक्य, एक साक्षी भाव उदय होने लगता है उसी वक्त। एको दृष्टा सर्वस्य

किसने कहा तुम बंधन में, तुम तो हमेशा मुक्त हो, तुम सबके दृष्टा हो, साक्षी हो। ये भूल बैठा इसीलिए तुमको लगता है कि तुम बंधन में। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हिदंशितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूं इस भाव का बड़ा सर्प तुम्हें काट चुका है, इससे तुम परेशान हो, मगर मैं करता नहीं हूं। इस भाव का अमृत तुम पीते ही तुम सुखी हो जाते हो। जैसे पीलिया का रोग किसी को लग जाए तो हर चीज पीला दिखता है, इसी तरह से कर्तापन की जो सांप है वो काट चुका है तुम्हें, शरीर में जहर आ गया है, तो इसलिए तुम परेशान हो। पर मैं करता नहीं हूं इस भाव से तुम इसका इलाज करो। बुखार उतरते सन्निपात चाहते ही, बुखार उतरते तुम शांत हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ। आप जेलों में जाके बात करिए, जो वहां बड़े से बड़े जो अपराधी हैं, जो कत्ल कर चुके हैं लोगों, उनसे जाके पूछे क्या तुमने क्या क्या, बोलेंगे नहीं जी हो गया हमसे, पता नहीं कैसे हो गया, किसी क्षण में ऐसे हो गया, मैंने नहीं किया। वो चौंक के बोलता है, बड़े से बड़े अपराधी वहां थे। दुनिया कहती है ये अपराधी है, मगर वो जानता है ये पता नहीं कैसे हो गया। एक व्यक्ति घर लौट आया, इलाहाबाद का था, मिल में काम कर रहा था, किसी मिल में घर लौट आया तो कुछ बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्से में आके उसने तलवार घर में जो चाकू को जो था उसको उठा के अपने पत्नी को मारा, भाई को मारा, भाई की पत्नी को मार दिया, तीनों को मार दिया उसने। और मार दिया तो फिर होश आया, फिर खुद जाके जेल में वो पुलिस में अपने आप को हवाले कर दिया उसने। और जब इसने प्राणायाम ध्यान वगैरह कुछ किया तो बोला कि वहां पता नहीं मुझे क्या भूत चढ़ गया मेरे ऊपर, मेरे से ऐसे काम हो गया, मैंने तो नहीं किया, किसी भूत ने मुझ पर चढ़ करके ऐसे काम करवा दिया। बाकी लोग थोड़ी ना मानेंगे वो कहीं कोई भूत ने आके कर दिया ये बात, मगर मैं उसकी बात समझता हूं। क्यों? हमारे भीतर एक तत्व है जो साक्षी है,